सुब्रह्मण्यम सन्मुखनाथा सुब्रह्मण्यम जय सुब्रह्मण्यम सुब्रह्मण्यम सन्मुखनाथा सुब्रह्मण्यम ओम ओम ओम।